रेडियो सारंग 107.8 FM विवेक संगीत स्वामी विवेकानंदरिगे संगीत नमन संगीत निर्देशन प्रवीण डी राव निरूपणे नंदगोपाल गायन स्वामी दिव्यव्रतानंद अजय वारियर रवि मूरूर वारिजा श्री वेणुगोपाल अंतर्ध्वनि तंडा निर्माण श्री रामकृष्ण आश्रम मैसूरू।